सत्यसंधो दाशार्ह सात्वतां पति जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो मित विक्रमः अंबो निधिरनंदात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्ह स्वाभाव्यो जिता मित्र

ज्योतिरादित्यसहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुद्धारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक्सर्वदृक्प्यासो वाचस्पतिरयोनिजः त्रिसामासामगस्साम निर्वाणम् वेषजम् विशक् सन्न्यासकृच्छमश्शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणः।

तेजो वृषोद्युतितरःसर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकश्रृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूह

रामसहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ॐ नमेति व्यासोवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वा